प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजो। आकाशवाणी टानागर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 जून महीने का शनिवार दिन और तारीख है 27। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग और तकनीकी अभियंता तानातुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक आपको पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो डायरेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पे शेयर सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक आपको एक फ्रेश शुरुआत मिलेगा।

7:10 सुनिए बताने दालिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज आपको एक एंगेजिंग अंदाज में 7:35 सुनिए ताकि दालिक न्यूज़।

7:40 पेज है सदाबहार सिद्धिक म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

गुड मॉर्निंग ईटानगर। दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर कार्यून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। जहां होती है दिल से दिल की बात। इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले और भक्ति से भरे पेश है दोयु पोलो भक्ति गीत तवाकुका और साथियों की आवाजों में।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट शुरुआत दी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इस सुबह के सफर को और भी खूबसूरत बनाते हुए। दोस्तों, वक्त हो गया है अपने आसपास की खबरों से जुड़ने का। सुनिए गालो दालेक न्यूज, जहां आप तक पहुंचती है आपके क्षेत्र की हर जरूरी और खास जानकारी आपकी अपनी भाषा में। यह आकाशवाणी का ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर हिलोपोल के चामनी को लकानी तर तेरी आरोसो को सिरग गलो में के नागो में मिलन जिरे में के नागो में जिनेगो मार्बम जिर दो देशो के पब्लिक नी गद रिमिन में मिंग दो कुन्ना अमला नशा मुक्त भारत अभियान से गी मास मूवमेंट को बरिगे कुबा अमला मरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेंतु गोइक देश से गी ड्रग फ्री इंडिया को मोनाम ग दिनचिनाम अबालो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बी एल वर्मा ग आर्टिकल एल एन नाम शेर जी दूला आगोम सिम निर्म मोदी भी मेंतु गोइक देश सिगिम ड्रग फ्री इंडिया ओक विकसित भारत मोनाम लगाव नारू मधुम कादुम मिन्सी लाजुका अमला सोशल मीडिया पोस्ट लो नी गद्दन प्राइम मिनिस्टर भी रोगुतातु ड्रग दोनाम लानाम सिगी मोग देश सोक नेशनल सिक्योरिटी नी गो सिगो सिगिम पुतु पातु सिगिम ओक देश सोक यूथ गिल सिल देने गद्दम अलमा रिजिमेंजी दो अमला मरो न्यू दिल्ली लो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का 10th एपेक्स लेवल मीटिंग का बाम दूदागलो होम मिनिस्टर अमित साब मेंदूला सिगिम रिगुम मेंगुम सिनाम लगाब नारुए बाकें दोला तोर्मिन लेमिन सिलाजु का अमला स्पिरिचुअल लीडर्स यूथ ओक अनगद्दम रोगुतातु ओक 2004 अन्य होकर ला 2014 अन्य लोग अथॉरिटी का 2.6 मिलियन किलोग्राम को ड्रग्स हम गाक पाला लारे बे ओके 2014 लोग 2026 अन्य लोग 11.8 मिलियन को ड्रग्स हम अथॉरिटी का द कासिका पे ला पुगने लाने का द लोग लारे न्यागे बा अमला निर्मिसाब मेंकें जितातु सिगी ड्रग्स पुगनाम लानाम सिगी मृतुम मेंतुम गनाम लगाव सरकार ग दिनचिव आगे गनाम कापातापा मोदो एमताजितु केन लोग याजाली ग नेपको कॉलोनी लो सिबुक बुगलक कोलो निदुम अप्पी मापाकुमा नाम गद्दम मालेंद्रुलेन अगेर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एम दोनी लोम नाब मेरो रिबेगतु सोगो एसडीआरएफ टीम लोग चामनीगोला निदुम आउम एसडीआरएफ जवान गद्द लोकल नी एक सर्विसमैन ओक पुलिस पर्सनल एम बाकेन दूला मोको नारू एम मगोन्यादू नेपको कॉलोनी लोक सिबुक बुगलुक दाग लोक आका आया गलुक बलुक नाम गद्दम लापक कोलोचिन बुनु नी गद्दम रिगुर कागुर न्यादू ओक इज लोब चामक गोला निदुम अनिगोब नाम का कुमार बीकेबी स्कूल के टेम्पररी सेल्टर मोकोलो दुबर बन्यादो अमला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मेंकें जितु ओके नेपको कॉलोनी लो इपिन चामुम गो नाम सिबु के लागे बा ओके चाम चामगो गोला इपिन पिन्नी नाम गो न मोयाग मोचाग मोजी मोजीपा अमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंकें जिदूला पोसा दोलू लोचिन इपिन पिन रे गो नाम सिबु के इंग गे बा ओक चामनी इपिन गो नाम मोयाग मोचाग मोजीपा अमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंकें जितातु ओक सर्च ऑपरेशन एम सिलोचिन रिगर एम ताजिदाग लकेलोक अरुणाचल प्रदेश स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बदुका कुंड सीनियर बीजेपी लीडर ताई तागांग ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा एमपी व दार्लेन लाकु न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट लो राज्यसभा एमपी व केनलो इनेन मदो आलोगो कोसम दोगे कुबा एम जिदाग कोसम दोदाग आलोलो तागाग भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन ने कारक सितु तन गदनुन गलो में के नगोम सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक के तपादु केन लोग सिबुक रचक रिदाग लो पोटिन होज पितापुल ओके पोसा मोको गदिलो बदाम रचक तुतुम खुनाम गद्दम रिकोक मेंको कम Reganyadu, posagala potin pengko moko jituku, regara racheke, ichin tutuni tunala, dangnam lega bagari guram in mokamba dama amla, menkenjidag, oka hojgala potin pengko lok badam ijagoba moko damatu, oka hojgala sagali pengko ge badam motenjikaku, oka potin gala kimin pengko ge badam chin mokok jige kuba amjidag. Keipanyo district welcome gate doko ge DNL stone crusher plant lo agerene nidum appi gonnam camp lo yubla dom pala bunuk campam rachak turup dona amla nidum appi sim achirup motanyatu sigim rachak tulupla

पर दोस्तों, सुबह की शुरुआत सिर्फ ताज़ा खबरों से नहीं, एक ताज़ा और तंदुरुस्त शरीर और मन से भी होता है। आप सभी का सभी को एक खूबसूरत सुनहरी सुबह का नमस्कार। मैं हूं आपके आरजे याजू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ताज़ा तरीन, आपको ऊर्जा से भर देने वाला खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, सुबह का ये वक्त ना बड़ा अनमोल होता है। पुराने लोग कह गए हैं कि जो सोया वो खोया, पर जो इस सुनहरी धूप में जाग गया उसने जिंदगी का असली सुकून पा लिया। हर नई सुबह हमें एक मौका देती है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपनी सेहत को एक नया मोड़ देने का। लेकिन अक्सर हम इस बागडोर जिंदगी में सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी सेहत। इसलिए आगे अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजें शामिल करके एकदम फिट और हमेशा मुस्कुराते रह सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत बातचीत का आगाज करते हैं एक बेहद प्यारे और रूहानी गीत के साथ, जो आपके दिन में पॉजिटिविटी खोल देगा। सुनिए ये पहला गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे। आज हम अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे योगा के कुछ ऐसे आसनों से जो हमारी रूटीन में आम नहीं है पर फायदेमंद बहुत है। पहला है गरुदासना, जिसे ईगल पोज भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गरुदासना की। इस आसन को करने से हमारे शरीर का बहुत बैलेंस यानी संतुलन बहुत बेहतर होता है। अगर आप दिन भर लैपटॉप पर काम करते हैं या खड़े रहते हैं तो ये आपके शोल्डर्स और अपर बैक की जकड़ा को बिल्कुल खोल देता है। इसके साथ ही एक और बेहतरीन योगा आसन है नटराजासना, जिसे लॉर्ड ऑफ द डांस पोज भी कहते हैं। यह आपके शरीर को एक सुंदर पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। दिमाग को शांत रखने के लिए ये एक जादू की तरह काम करता है। तीसरा है मार्जारीसना, जिसे कैट काउ स्ट्रेच कहते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के लिए वरदान है। अगर आपको बैक पेन हो रहते हैं तो सुबह 2 मिनट इस स्ट्रेच को करने से आपका पूरा शरीर खुल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। चलिए योगा टिप्स को ध्यान में रखिए, तब तक के लिए सुनते हैं सुबह का ये दूसरा खूबसूरत नगमा।

सुनहरी धूप, ठंडी हवा और ये बेहद प्यारा गाना, सुबह का मजा ही कुछ और है। अब जुड़े हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। योगा के बाद अब बढ़ती है थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दे और आपको दिन भर फ्रेश रखे। अगर आप रोज रोज वही वॉक या जॉगिंग करके बोर हो गए हैं तो आज से अपनी

रूटीन में रस्सी कूदना शामिल कीजिए। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है जो कम वक्त में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और आपके दिल को मजबूत बनाती है। इसके अलावा अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह सिर्फ 2 से 3 मिनट हाई नीज एक्सरसाइज कीजिए, जहां आपको एक ही जगह खड़े होकर अपने घुटनों को चेस्ट तक ऊपर लाना होता है। ये आपके कोर और लेग्स को बहुत स्ट्रांग बना देगा। और हाँ, कोर स्ट्रेंथ के लिए डेली कम से कम 1 मिनट का प्लैंक होल्ड जरूर करें। यह आपके पेट के मसल्स को टाइट करता है और आपके बॉडी पोस्चर को एकदम परफेक्ट बनाता है। चलिए, एक्सरसाइज तो हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और पहले सुनते हैं इस सफर का आखिरी गाना।

दोस्तों, उम्मीद है इस आखिरी गाने ने आपके अंदर एक नई एनर्जी बढ़ दी होगी। अब वक्त है आज की सबसे जरूरी हेल्थ टिप्स का, जो सीधे आपके किचन और लाइफस्टाइल से जुड़ी है। सुबह उठते ही बिना कुछ खाए कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। यह आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो लेकर आता है। सुबह की पहली धूप में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर बिताइए। इससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और आपके मूड को भी फ्रेश रखेगा। एक और पुराना पर असरदार नुस्खा, रात को तांबे के बर्तन में पानी रख दे और सुबह उठकर उसे पिए। ये आपके डाइजेशन पानी यानी पाचन क्रिया को बहुत बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो दोस्तों, सुबह सवेरे का आज का सफर बस यही तक था। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने शरीर को रोज थोड़ा वक्त दे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक खुशहाल मन का वास होता है। अब मुझे यानी अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी। मिलते हैं कल सुबह फिर से इसी वक्त कुछ और नए हेल्थ टिप्स और ढेर सारी गानों के साथ। दोस्तों, ये आकाशवाणी का ईटानगर के आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे अपनी डायलेक्ट में न्यूज़।

सीपम पोलो कालोनी खा हेला लोकाने ने अड़ो सिसी आकाशवाणी ईटानगर जीरो होकला सरो कतन मुगो पागो आता में मलिम बली सरो ननो का पेजा पा पुइलो को ने मिता पातो दो सरो का पुइलो को लेंसी पुरा यमो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुला नसा मोक्त भारत अभियान से मिवाटांका आहा हम बोला कम को हो पा सलो अनो काया को पाली रोको हला मिस्टर मोदी हड़ापा लुबाला सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर बीएल वर्मा का आर्टिकल कहने में लोको बदोला मलांजा में लुन्याला इंडिया गंदा में ड्रग फ्री गंदा मसुन अनो खन आको पा जिदो हला लुकोला सोशल मीडिया हो पोस्ट मिला मीयू आता कोनिया भी में सकम को हो मो बोला इंडिया गंदा में आया दो सुको में हम बोन्याला मुन्या दो पा लुन्या बने हला लुको दो होम मिनिस्टर अमित शाह ड्रग्स हला दिशा सामने में दिन्यामा दोपा मलांजा में हेम्बुन से भी दोला से में दो कुमा दोपा मबासला मुन्या दोपा मलांजा में लुन्या बने हला लुकोला मो लुबाला सका ड्रग्स से गंदा का सिक्योरिटी सोशल स्टेबिलिटी इकोनॉमी हो गंदा का यूथ संचय में आतंका संगो हो आजनु अलो हो आयामापा यिन्या केंदो हला लुकोला मो लोला स्पिरिचुअल लीडर्स यूथ हो अन आतं मलांजा हु तोंगे पा मबासला सका आयामा ने सिमी मपा दो कुपा सिमी जीती दो पमो दो कोदा हला लुने ला लुको दो सका लुने सी न्यू दिल्ली होका नर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का रोल्याने पा दुकुमी काम को हो लुने मिस्टर सा लुकोला इने को ने अन्य 2004 होकला 2014 लोए पा अन्य पॉइंट 6 मिलियन केजी ड्रग्स में लातुला हो 2014 होकला 2026 जाए पा सिमी अब योकुपा अन्य हैला अको पॉइंट 5 मिलियन केजी में लातुतु को हला लुकोला मोलोला गवर्नमेंट का ड्रग्स में मुमा दो पा लका कैंपिंग मगने सी आया दो म्यू आतंका लिगुमी कपादो हला लुने ला लुको दो कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट

दोस्तों आप पता नहीं दैनिक में खबरों का सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन दोस्तों बातों और ज्ञान का सफर तो अभी शुरू हुआ है। आप सभी को इस खूबसूरत सुनहरे सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे याजू और आपके संग जुड़ चुकी हूं लेकर आकाशवाणी का एक बेहद शानदार अनोखा और ज्ञान से बरपानी शो मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। सुबह का सूरज जब नई उम्मीदें लेकर आती है तो उसके साथ हमें मिलती है एक नई ऊर्जा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारीख आज हमारे सामने है यानी 27 जून, इसने गुजरे जमाने में दुनिया को कैसे बदला था। कल क्या था, आज क्या है और आने वाला कल कैसा होगा, इन्हीं सब दिलचस्प बातों का पूरा हिसाब किताब लेकर आई हूं मैं अगले कुछ घंटों के लिए। हम बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों की जो आज के दिन लिखे गए और साथ ही नजर डालेंगे हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश की उन ताजा तरीन खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं एक बेहद बेहतरीन और फ्रेश म्यूजिक ट्रैक के साथ जो आपके मूड को एकदम ताजा कर देगा। सुनिए ये पहला गाना।

दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले हम चलेंगे इतिहास के सफर पर और नजर डालेंगे ग्लोबल हिस्ट्री यानी वैश्विक इतिहास के उन बड़े इवेंट्स पर जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज ही के दिन साल 1954 में सोवियत यूनियन के ओब्निंस्क शहर में दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू किया गया था। इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी बिजली उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। आज हम सब जो पॉकेट में कैश लेकर नहीं घूमते और जब चाहे मशीन से पैसे निकाल लेते हैं, उसकी शुरुआत आज ही के दिन 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक में पहला एटीएम जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंस्टॉल कहते हैं, वो इंस्टॉल हुआ था। आज ही के दिन साल 1898 में जोशुआ स्लोकम नाम के एक कैनेडियन अमेरिकन एडवेंचरर ने अकेले अपनी कश्ती में पूरी दुनिया का चक्कर काट कर इतिहास रचा था कि अकेले समुद्र पर सबसे बड़ा एंड्योरेंस रिकॉर्ड था। आज ही के दिन 1972 में वीडियो गेम इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाली आइकॉनिक कंपनी अतारी की शुरुआत हुई थी। इनके पोंग जैसे गेम्स ने इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। दुनिया का हाल तो जान लिया दोस्तों, अब वक्त है हमारे अपने देश के इतिहास को टटोलने का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये एक और शानदार गीत।

वेलकम बैक टू मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट ग्लोबल इवेंट्स के बाद अब बात करते हैं हमारे अपने इंडियन हिस्ट्री यानी भारत के इतिहास के उन बड़े पन्नों की जो 27 जून से हमेशा के लिए जुड़ गए। आज ही के दिन साल 1839 में सिख एम्पायर के महान शासक जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है महाराजा रंजीत सिंह का निधन हुआ था। उनका शासन अपनी बहादुरी और धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा याद किया जाता है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े क्रांतिकारी और जादूगर हमारे प्यारे राहुल डे बर्मन यानी पंचम दा का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। उनके बनाए संगीत के बिना आज भी हमारे सुबह और शाम अधूरी है। भारत के सबसे महान एथलीट्स में से एक और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली पीटी उषा का जन्म आज ही के दिन साल 1964 में हुआ था। उन्होंने ट्रैक और फील्ड में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 200 साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के सबसे बड़े हीरो और इंडियन आर्मी के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशो ने आज ही के दिन 2008 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनका रोप और उनकी बातें हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। इतिहास की बातें तो हो गई दोस्तों, पर अब वक्त हो चला है आज की ताजा खबरों पर नजर डालने का। चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश के मुख्य अखबारों की ताजा हेडलाइंस और उनकी पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने का। सर्च द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, सर्च इंटेंसिफाइज फॉर फोर पीपल मिसिंग इन फ्लैश फ्लड। हमारी पहली बड़ी खबर दुखद है, राज्य में अचानक आई फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के बाद लापता चल रहे चार लोगों की तलाश अब और भी तेजी से तेज कर दी है। एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। म्याओ पावर सबस्टेशन सेट फॉर कमिश्निंग बाय जुलाई एंड। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के म्याओ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, वहां का नया पावर सबस्टेशन इस जुलाई के महीने के आखिरी तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, जिससे इलाके में बिजली की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। डिसफंक्शनल स्कूल टू रीओपन सून। शिक्षा के क्षेत्र से एक बेहद सकारात्मक खबर, काफी समय से बंद पड़े एक सरकारी स्कूल को दोबारा खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है, ताकि बच्चे एक बार फिर से अपनी पढ़ाई बिना किसी परेशानी से शुरू कर सके। एफएनसीज डिपार्टमेंट प्रायोरिटाइज इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने ये साफ कर दिया है कि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी जनता तक बेहतर और सस्ती सुविधाएं बिना किसी देरी के पहुंचाना है, जिसके लिए नए ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ऑब्जर्व। पूरे स्टेट में नशा मुक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज बड़े पैमाने पर मनाया गया। अलग अलग जगहों पर रैलीज और अवेयरनेस कैंप्स के जरिए नए यूथ को नशा से दूर रहने का संदेश दिया गया। दोस्तों, कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में आज बस इतना ही। आकाशवाणी ईटानगर का RNFM 103.1 MHz से अब आप सुन पाएंगे तारीन श्रोताओं का कार्यक्रम।

니들아쳇대 다툼 꾸남러 큰거 소니 레버 앞시 겔린 요구마 버리 남거 켈라 메팔렌 두고 옹네 따르게네 레버 그군이 아약 바통군이 니들아쳇대 다툼 버틀라 섬 라렌 락플라 네네 도바이가 옹네 따르게네 레버 더덕 nga yajali ga nepko hospital lo ne de dubai nga magi kula coach nga zero hospital lo pau kunam nga kela mi fadu ku so labor de si asam ga north lokimpur ok bungai gaon district lo ni bile ku kela mi falin du ku अरुणाचल प्रदेश लो राज्यसभा एमपी ताई तगक नी किलो गे तार्स दे अलुलो पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली लो राज्यसभा एमपी गुब ओटॉप ऑफिस गा कुसुम क्वांगा लामु लखुला दिगनि कुब अला बिन फादु कु सो ग कुसुम क्वा ओटॉप ऑफिस अफर्मेशन गा राज्यसभा ग चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ग गंब tai tagak ni kosong kuangan do mulak pula di gani kuwala me falen doku dideracit engku potin hoz pitaful ok roz posa lo road clearance operation nga try de alulo kare rap gani kuwala me falen doku so posa potin point lo at किलोमीटर अरालो मायो मालो ने राचि ng सजे का चदे नाम लखंग बस कन काम nga अल बरिलिन यो माला बिपादु ओकसु नि अंको चापित मादुब मतम दुखनाला मेफाल लेंदुको ओको पोतिन लोको होज गरिलामदा ng सजे लुदेब ब्लॉक पे नाम लखंग ब गरीगोरा अंतोंग चांग न्यो कुमा दुला मे फालिन दुखु होज लोक सगाली गरलाम दांगा मको दुखु ओक पोतिन लोक किमिन गरलाम दाब गरिंग अलब जो कोजक फिर लाई खुनेला मे फालिन दुखु फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप डी मैच लो ऑस्ट्रेलिया ग पराग्वे ग गोलेस गोब ड्रोला रिनाम लेखिंग ब ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट स्टेज nga qualified to kula me falen do ko sruge tagen gamba yuning bentam sangka hebo

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे अब पता नहीं दालेक में समाचार। अब सुरीले संग नगमों और पुरानी यादों का सफर तो अब शुरू होने जा रहा है। आप सभी को इस खूबसूरत सुबह का सुनहरा नमस्कार। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के सबसे हसीन और यादगार कार्यक्रम जिसका नाम है सदाबहार। कहते हैं कि नए गाने वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर जो पुराने गाने होते हैं वो हर गुजरने वक्त के साथ और भी हसीन होते जाते हैं। वो गाने जो हमारी यादों से जुड़े हैं, जो हमें बीते हुए कल की गलियों में ले जाते हैं। अगले कुछ घंटों तक हम और आप मिलकर उन्हें सुनहरे दौर के संगीत में डूबने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यादों की जराखों खोले, हम बात करेंगे आज के मौसम की भी, ताकि आपका दिन सेफ और सुहाना रहे। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और हसीन पुराने गीत के साथ। सुनिए ये पहला नगमा।

दोस्तों, पुराने गानों का मजा तब और बढ़ जाता है जब मौसम का हाल मालूम हो। तो चलिए सीधे चलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश की तरफ और नजर डालते हैं हमारी राजधानी ईटानगर के डिटेल वेदर अपडेट पर। आज ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के वक्त ठंडी हवाओं के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे मौसम काफी सुहाना बना रहेगा। मौसम की बातें अभी और भी है, पर पहले लौटते हैं शुरू की दुनिया में एक और सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, इस गाने ने तो सच में पुरानी यादें ताजा कर दी। आप जुड़े हैं मेरे साथ कार्यक्रम सदाबहार में। ईटानगर के बाद अब नजर डालते हैं हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश की ओवरऑल वेदर पर, क्योंकि आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए अगले 24 से 48 घंटों का एक जरूरी अलर्ट दिया है। आईएमडी अरुणाचल प्रदेश के मुताबिक हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे पापुमपारे, वेस्ट सियांग, ईस्ट कामेंग और चांगलांग में आने वाले 24 घंटों में अचानक तेजी से भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ कई जगहों पर बादल गरजने और तेज बिजली चमकने का अलर्ट भी है, इसलिए खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचे। राज्य के हिली एरियाज और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तापमान थोड़ा गिर गया है। वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि प्लेन एरियाज में ये 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भारी बारिश के चलते कुछ हिली रोड्स और टेरेन्स पर धुंध और फिजिकल हजार्ड के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए अगर आप पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव कर रहे हो तो पूरी सावधानी बरतें। मौसम का पूरा हाल अब आपको पता चल गया है और वक्त हो चला है इस सेगमेंट के एक और सुनहरी और बेहतरीन गाने का। सुनिए और गुनगुनाइए ये गीत।

तो सो उम्मीद है इस आखिरी गाने ने आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी होगी। दोस्तों, हमारे इस खास सेगमेंट सदाबहार के सफर आज के लिए बस यही तक था, लेकिन आपका और मेरा साथ अभी टूटने वाला नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं आपके साथ रहूंगी सुबह के 11 बजे तक स्टूडियो में, और हम ढेर सारी बातें और आपके पसंदीदा गानों के सिलसिले के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था आकाशवाणी ईटानगर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के

0: साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में 8 से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: दोस्तों, दिलों दिल्ली और शिलोंग से खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। पर दोस्तों, ज्ञान, शिक्षा और ढेर सारी बातों का सफर तो अब शुरू होने जा रहा है। आप सभी को इस खूबसूरत और सुनहरे सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपकी आरजे याजू और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के सबसे इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, इस शो का मकसद ही यही है कि हम हर सुबह आप तक ऐसी जानकारी और शिक्षा पहुंचाए जो आपकी और आपके परिवार के काम आए। कहते हैं ना कि ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है। और जब बात हमारी सेहत और सामाजिक जिम्मेदारी की आती है तो अवेयरनेस यानी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। आज की सुबह हम एक बेहद जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। आज के दिन की अहमियत क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानेंगे हम। लेकिन इससे पहले कि हम ज्ञान के पन्नों को खोले, चलिए अपने मूड को ताजा करते हैं एक बेहद प्यारे से गीत के साथ। सुनिए ये पहला गाना।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर हेलो ईटानगर। दोस्तों आज यानी 27 जून का दिन पूरे दुनिया में एक बेहद जरूरी मकसद के लिए जाना जाता है। आज है नेशनल एचआईवी टेस्टिंग डे, लेकिन इस दिन की शुरुआत जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक इतिहास है जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम गुजरे जमाने में ध्यान दें तो 1980 के दौर में दुनिया के सामने एक ऐसी अनजान बीमारी आई जिसने सबको डरा दिया। साल 1981 में पहली बार इसके केसेस सामने आए और तब किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। शुरुआत में इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमियां फैली, लोगों में डर बैठ गया और लोग एक दूसरे से भेदभाव करने लगे। फिर साल 1983 और 84 में साइंटिस्ट ने इस वायरस की खोज की और इसे नाम दिया गया एचआईवी। उस दौर में इसका कोई इलाज नहीं था और लोग टेस्टिंग करवाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो समाज उन्हें अपनाएगा नहीं। इस डर को दूर करने के लिए साल 1995 में पहली बार अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ पीपल विथ एड्स ने 27 जून को नेशनल एचआईवी टेस्टिंग डे के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका मकसद बड़ा साफ था, लोगों को ये समझाना कि टेस्टिंग से डरना नहीं है बल्कि टेस्टिंग ही इस बीमारी से लड़ने का पहला कदम है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये वायरस शरीर पर कैसे असर करता है, पर पहले सुनते हैं ये एक और खूबसूरत म्यूजिक ट्रैक।

0: click on the bell icon to get regular
1: updates. वेलकम बैक दोस्तों, आप जुड़े हैं मेरे साथ कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नेशनल एचआईवी टेस्टिंग डे के बारे में। अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि ये एचआईवी आखिर हमारे जिस्म पर असर कैसे करता है। दोस्तों, एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में दाखिल होकर सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर हमला करता है। ये हमारे अंदर के उन व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म करने लगता है जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे हमारा जिस्म छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता और इसी आखिरी स्टेज को हम एड्स कहते हैं। शुरुआत में जब किसी को एचआईवी होता है तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर बिल्कुल आम फ्लू या बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे गले में खराश, थकान या बदन दर्द। लोग इसे आम बुखार समझकर छोड़ देते हैं। इसके बाद ये वायरस सालों तक बिना किसी लक्षण के शरीर में शांत बहता रहता है, पर अंदर ही अंदर इम्यून सिस्टम को कमजोर करता रहता है। इसलिए कहते हैं कि बिना टेस्ट किए कोई नहीं बता सकता कि किसी को एचआईवी है या नहीं। चलिए, ज्ञान का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पर अभी सुनते हैं शो के दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त मुझे करना पड़ेगा टाइम लिमिट की वजह से। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम को आपको बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, जितना जरूरी ये जानना है कि एचआईवी कैसे फैलता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये कैसे नहीं फैलती। आज भी समाज में बहुत सी गलत फहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, एक ही बर्तन में खाना खाने से या यहां तक कि एक ही टॉयलेट में यूज करने से ये बीमारी फैल सकती है, पर यह बिल्कुल झूठ है। एचआईवी आम छूने से या दोस्ती रखने से कभी नहीं फैलती। ये वायरस सिर्फ कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ही एक से दूसरे में जा सकता है।

0: जैसे उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से, इन्फेक्टेड खून चराने से, या एक ही इंजेक्शन की सुई को बार बार इस्तेमाल करने से। इसका बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। आज के दौर में तो पीआरईपी और पीईपी जैसे एडवांस दवाइयां भी हैं, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो तो एक पॉजिटिव व्यक्ति भी एकदम नॉर्मल और लंबी जिंदगी जी सकता है। इसलिए डरना छोड़िएगा, सही जानकारी अपनाएगा और टेस्टिंग से कभी मत घबराइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन FM 103.1 MHz से, और अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में दो सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारत का कल

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। अब वक्त हो चला है उस नगरी का रुख करने का जहां ग्लिट्स है, ग्लैमर है और ढेर सारी मसलेदार कहानियां हैं। आप सभी को इस चमचमाती सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपकी आरजे याजू और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के सबसे मसालेदार, चटपटे और ताजा तरीन शो में जिसका नाम है फिल्मी कक्षा। दोस्तों अगर आप भी हैं फिल्मों के दीवाने और बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी ताजा खबर पर रहती है आपकी नजर, तो अगले कुछ मिनटों आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन बड़े और बिल्कुल करंट अपडेट्स की जो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि फिल्मी सफर शुरू हो चुका है। चलिए इस धमाकेदार शुरुआत को और थोड़ा शानदार बनाते हैं इस साल के बड़े चार पांच से गाने के साथ।

वेलकम बैक फिल्मी दीवानों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। और दोस्तों, शो की शुरुआत में ही बात करते हैं उस टीजर की जिसने इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक बुरा ला दिया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म ईदा की टीजर की। टीजर के आते ही फैंस बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं और सच कहूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म श्रद्धा की के करियर की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू मूवी होने वाली है। उनका एक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल का है कि जब आप उन्हें टीजर में देखते हैं तो आपको कहीं भी श्रद्धा कपूर नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ उनका धांसू कैरेक्टर ईथाबाई दिखता है। इतना कन्विंसिंग और रो अवतार उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। मजेदार बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर फैंस इस टीजर को वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म अल्फा से कंपेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां अल्फा का एक्शन बहुत बड़ा था, वहां ईथा का टीजर अपने रो इंटेंस और लुक और बैकग्राउंड स्कोर की से कड़ी टक्कर दे रहा है। श्रद्धा ने सच में सबको हैरान कर दिया है। वैसे कि आपने ये टीजर देखा, सोचिए इस बारे में। तब तक सुनते हैं ये दूसरा बेहतरीन गाना।

दोस्तों आप जुड़े हैं मेरे साथ प्रोग्राम हेलो फिल्म गपशप में, और चलिए आप रुक करते हैं बॉलीवुड की अगले बड़े और बिल्कुल ताजा हेडलाइन की तरफ। दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किंग खान यानी शाहरुख खान के अगले मेगा प्रोजेक्ट से सोर्स के मुताबिक डायरेक्टर एटली और एसआरके ने जवान टू की कोर स्क्रिप्ट पर काम पूरा कर लिया है। खबर है कि इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा बड़ी और ग्लोबल लेवल की होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान और एकदम नए और पहले से भी खतरनाक अवतार में दिखेंगे। सोशल मीडिया पर जवान तू अभी से ट्रेंड करने लगा है और फैंस उनके इस कमबैक अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए इस धमाकेदार अपडेट के बाद सुनते हैं एक और शानदार गाना।

बस तो बॉलीवुड की गपशप यूं ही चल रही है और खबरें बिल्कुल गर्म हैं। अगला बड़ा अपडेट आ रहा है मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स से। स्ट्री 2 के बाद सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद अब स्ट्री 3 की प्री प्रोडक्शन और लोकेशन स्काउटिंग अगले महीने से शुरू होने जा रही है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा डरावना और कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। सोर्स की माने तो इस बार इस यूनिवर्स में एक नया भूतिया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका कैमियो इस साल का एंड में आने वाली एक और फिल्म में देखेगा। चलिए संगीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये खूबसूरत गाना।

दोस्तों बात करते हैं रणबीर कपूर की। उनके आने वाली मेगा बजट फिल्म रामायण के वीएफएक्स और सीजीआई का काम इस वक्त पूरे जोर जोर से चल रहा है। ताजा खबर यह है कि फिल्म के ग्रैंड वॉर सीक्वेंस के लिए डायरेक्टर नितेश तिवारी ने हॉलीवुड के उनके स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को साइन किया है, जिन्होंने बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। रणबीर का लो ड्रामा वाला लुक बिल्कुल लॉक हो चुका है और फिल्म का पहला ऑफिशियल ग्लिम्स भी रिलीज हो चुकी है। चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं शो का ये दूसरा गाना।

वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप दोस्तों। मौसम फिल्में हैं और अपडेट्स बिल्कुल ऑन पॉइंट हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री के सबसे डैशिंग स्टार कार्तिक आर्यन की। सोर्स से पता चला है कि कार्तिक ने एक नई बजट रोम कॉम साइन की है जिसकी शूटिंग लंदन और यूरोपियन लोकेशंस पर शुरू होने वाली है। भूलभुलैया के धमाके के बाद कार्तिक अब दोबारा अपने रोमांटिक हीरो वाले अवतार में लौट रहे हैं और फैंस इस बात से बेहद खुश है कि इस बार उनके साथ एक नई फ्रेश लीडिंग लेडी नजर आने वाली है जिसका नाम अभी तक मेकर्स ने छुपा कर रखा है। इस मस्त अपडेट के बाद थोड़ा संगीत का मजा लेते हैं, सुनिए ये अगला गीत।

0: दोस्तों बात करते हैं दीपिका पादुकोण की स्क्रीन पर वापसी की। अपने ब्रेक के बाद दीपिका ने अब अपनी अगली बड़ी हीरोइन सेंट्रिक एक्शन ट्रेलर फिल्म के लिए ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है। ये एक हाई ऑक्टेन स्पाई ड्रामा होने वाला है जिसमें दीपिका पूरे देश को बचाते हुए नजर आएंगी। स्क्रिप्टिंग पर फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और डायरेक्टर इस साल के मिड तक रोलिंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags.
0: चलिए अब नजर डालते हैं ओटीटी की दुनिया पर, जहां इस वक्त सबसे बड़ा धमाका हो रहा है। मनोज बाजपेयी की सबसे पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन सीजन 4 के सेट से पहली बार कुछ ऑफिशियल बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्सेस लीक हुए हैं। श्रीकांत तिवारी इस बार एक बिल्कुल नए इंटरनेशनल थ्रेट से लड़ते हुए देखेंगे और इस बार का बैकग्राउंड सेटअप नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों के आसपास बताया जा रहा है। इंटरनेट पर इसकी हाइप इस वक्त बहुत सारा चल रही है। दोस्तों बातें तो बहुत सारी हो गई, अब वक्त हो चला है इस सेगमेंट के आखिरी गाने का। एंजॉय कीजिए इस सुपरहिट ट्रैक को।

दोस्तों, उम्मीद है इस आखिरी गाने ने आपके अंदर एक नई एनर्जी भर दी होगी। दोस्तों, हमारे इस मसलेदार और फिल्मी सेगमेंट फिल्मी गपशप का आज का सफर बस यही तक था। श्रद्धा का ईथा टीजर जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ईथा बाई का अवतार कैसा लगा। लेकिन दोस्तों, फिल्मों का सफर खत्म हुआ है, गानों और बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी यही स्टूडियो में आपके साथ बनी रहूंगी अगले सेगमेंट के लिए ढेर सारी बातों और बेहतरीन गानों के साथ। इस खास सेगमेंट को तो अब अलविदा कहने का वक्त हो गया है और आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि गानों का ये हसीन कारवाई मेरे साथ यूं ही चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम पर। यह आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, आप अब सुन पाएंगे दिल्ली से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबो वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी और आप सभी के सबसे पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों कल शो खत्म करने की आखिरी घड़ियों में दो बेहद प्यारी फरमाइशों पर आकर हमारी घड़ी रुक गई थी। वक्त की पाबंदी और थोड़ी समय की कमी थी, इसलिए मैं कल वो दोनों गाने नहीं चला पाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आज स्टूडियो में आते ही मैंने सबसे पहले तय किया कि कोई और बात में पहले कल के वो दोनों उधार चुका जाएंगे आज। तो सबसे पहले हमारे बेहद लॉयल लिसनर रोमेश, रूनू और लकी, आप तीनों से मैं माफी चाहती हूं और आपकी फरमाइश पर शो का सबसे पहला गाना पेश कर रही हूं। फिल्म सिलसिला से सुनिए ये खूबसूरत नगमा, देखा एक ख्वाब।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर रेडियो ऑन डिमांड, जहां चलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के गीत। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं कल की दूसरी पेंटिंग फरमाइश की तरफ, जो सीधे आई है सेंकी पार्क ईटानगर से। हमारे लिसनर आरफ ने कल बड़ी उम्मीद से ऐसी फरमाइश भेजी थी जो इस साल हर एक हिन्दुस्तानी के दिल की धड़कन बन चुकी है। वैसे आरफ जी ने आज भी मैसेज भेजा है इस गाने को प्ले करने के लिए। जी हाँ, बॉर्डर फिल्म 2 का वो आइकॉनिक और दिलों को छू लेने वाला संगीत जिसे सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने गाया है। आरव, कल के लिए एक बड़ा सा सॉरी, और आपने आज भी रिक्वेस्ट भेजी है तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। तो ये लीजिए आपका ट्रैक घर कब आओगे।

वेलकम बैक दोस्तों। कल के दोनों वादों को पूरा करने के बाद अब रुख करते हैं हमारे आज के बिल्कुल पहले और ताजा फरमाइश की तरफ, जो सीधे पहुंची है लंकांगसम असम से। वहां से हमारे बेहद लॉयल लिसनर्स टेंशन क्रो, रोजमेरी, अथुर और सरलो ने एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। उनका कहना है कि इस सुहानी सुबह में इस गाने से बेहतर मजा और कहीं नहीं मिलेगा। तो टेंशन क्रो और उनकी पूरी गैंग के लिए लंकांगसम असम की तरफ हवा के झोंके के साथ भेज रहे हैं ये प्यारा सा गीत, सच्ची कहो हमसे तुमको प्यार कितना।

वेलकम बैक दोस्तों, सुरीली गीत बज रहे हैं और आपकी फरमाइश के मैसेजेस हमारे स्टूडियो में लगातार पहुंच रही हैं। चलिए अगला रुख करते हैं सोनितपुर असम की तरफ, जहां से हमारे डेली लिसनर अमल बसुमा तारी जी ने हमें याद किया है। अमल ने फिल्म गुना से एक बहुत ही प्यारी मेलोडियस गाना चुनकर भेजा है और उन्होंने ये गाना किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे दोस्तों के ग्रुप के लिए यानी अपने दोस्ती के नाम डेडिकेट किया है। अमल, आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे आपकी फरमाइश पर और आपके सभी दोस्तों के लिए मैं प्ले करने जा रही हूं ये सुपरहिट ट्रैक हमने तुमको दिल दे दिया है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर रेडियो ऑन डिमांड। चल रहा है आपकी मोहब्बत और फरमाइशों का सिलसिला। दोस्तों, अगला गाना चलाने से पहले मुझे एक बहुत ही शानदार लिसनर का जिक्र करना है। कुदाली आसाम से हमारे डेली लिसनर हितेंद्र जी ने एक बेहद खूबसूरत फरमाइश भेजी है। 90s का वो आइकॉनिक रिमझिम बारिश वाला गीत टिप टिप बरसा पानी। पर इस खबर की सबसे प्यारी बात यह है कि हितेंद्र जी ने ये गाना अपने दोस्तों के साथ साथ आकाशवाणी के सभी आरजीज को डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच हितेंद्र जी। सच में आपने तो स्टूडियो में बैठकर हमारा दिन बना दिया। ऐसे प्यारे लिसनर जब पूरे दिल से पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे काम का मजा दुगना हो जाता है। पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको एक भरा सा थैंक यू। चलिए आपकी इसी डेडिकेशन और आपके दोस्तों के नाम बजाते हैं। रवीना टंडन और अक्षय कुमार का ये एवरग्रीन ट्रैक टिप टिप बरसा पानी।

दोस्तों चलिए बारिश के मौसम से निकलकर अब थोड़ा धूमधड़ाका और नखरे झेलने का वक्त हो चला है। गोलाघाट आसाम से हमारे लिसनर नम्रता जायसवाल ने

0: बस उम्मीद है इस गीत ने आपके मन को झूम उठाया होगा। फरमाइश की मैसेजेस अभी भी बाकी है, लेकिन अफसोस वक्त की पाबंदी और समय की कमी के कारण आज हमारे सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड का सफर बस यही तक रहेगा। जिन दोस्तों के गाने आज छूट गए हैं उनसे मैं दिल से माफी चाहती हूं। आप निराश मत हो जाइए, कल सुबह आप अपनी फरमाइश दोबारा भेज सकते हैं और हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तंगजांग और तकनीकी अभियंता तानातुम। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा, अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। आकाशवाणी जानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG. Get attractive offers
2: up to... Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Vishal Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और

0: दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर। और इस प्रोग्राम में आइए पहला गाना सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम से। संगीत राहुल देव बर्मन का है, गीतकार है गुलशन पावरा और आवाज है आशा भोसले की।

अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

0: कुमार सानू एवं कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में आपने सुना हम दिल दे चुके सनम का ये गाना। आप श्रोता बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी लहर में।
1: पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: अनुराधा पौडवाल एवं सोनू निगम की आवाज में आपने सुना तुम बिन फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए थे प्रोग्राम फिल्मी लहर में और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
2: Hello everyone, this is Kansan, your host for today, and welcome back to Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. In this session, we slow things down and turn inward. These are the songs that don't need to be loud to be powerful. They speak softly yet leave a lasting impact. So we begin with a song that feels like home in itself.

आप सुन रहे थे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

0: सनम। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन

0: इन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम यादों की बारात में। जी हाँ, ये प्रोग्राम खास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है। तो आइए इस प्रोग्राम में पहला गाना सुनते हैं फिल्म बेमिसाल से लता मंगेशकर की आवाज में।

अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ।
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ।

अनुराधा पौडवाल एवं सुरेश वाडकर के आवाज में आपने सुना भ्रष्टाचार फिल्म का ये गाना। श्रोता दोस्तों, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम यादों की बारात में, और आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म बिन बादल बरसात से।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आपने सुना था हेमंत कुमार की आवाज में बिन बादल बरसात का ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है ये गाना। इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों की बारात आज के लिए यहीं समेटते हैं और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला।
0: कृपया ध्यान दे, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला।

श्रोता दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत माला में। और आइए सुनते हैं प्रोग्राम की शुरुआत में बॉबी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम गीतमाला में।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखिए 28

0: फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

सैलेंडर सिंह की आवाज में आपने सुना जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं फौजी भाई बहनों के प्रोग्राम गीतमाला में।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
3: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर एवं साथियों की आवाज में तीन देवियां फिल्म का ये गाना। आप बने हुए थे हमारे साथ फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीत माला में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है, और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारी

0: आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
3: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
2: Punjab police has busted another cross-border

0: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये प्रोग्राम जिसमें हम सुनाते हैं आपको सार से लेके 80 के दशकों तक के बेहतरीन गाने। अब जो हम सुनाने जा रहे हैं वो है फिल्म आए दिन बहार।

से है। ये गाना लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ है। फिल्म आए दिन बहार के ये बनी थी 1967 में। निर्माता जे ओम प्रकाश द्वारा निर्मित ये फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख, बलराज साहनी और राजेंद्र नाथ मुख्य भूमिका में हैं। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं आन मिलो सजना का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में।

Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आपने सुना लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में अभिलाषा फिल्म का ये गाना। और इसी गाने के साथ ही हमारा प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का आज के लिए यहीं समेटते हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं हिंदी फिल्म में गाने। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे दिल है तुम्हारा फिल्म से चंद गाने। तो लीजिए आइए पहला गाना सुनते हैं सोनू निगम एवं अलका याग्निक के आवाजों में।

अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखिए, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

0: शान एवं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आपने सुना दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं हिंदी फिल्में गाने।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

हिमाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक

0: and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
6: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
6: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
7: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

0: सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में

0: बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए अब समय हो चला है हमारे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s का। हिट्स ऑफ 90s में आज हम आपको पहला नगमा सुना रहे हैं फिल्म हम से। जी हाँ, हम बनी थी 1991 में। इसका निर्देशन मुकुल आनंद ने किया था और प्रमुख भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, दीपा साही, शिल्पा शिडोडकर, डेनी डेंजोंगपा, अनुपम खेर और कादर खान जैसे फेमस एक्टर्स हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1991 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरे स्थान पर रही थी और ये इसे ब्लॉकबस्टर का तमगा दिया गया था। अमिताभ ने 1992 में इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना शोभा जोशी, मोहम्मद अजीज की आवाज में।

0: आपने सुना दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गाना कुमार सानू एवं आशा भोसले के आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s।
1: हिमाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए

0: हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में। हिट्स ऑफ 90s में आइए अगली पेशकश सुनते हैं फिल्म संघर्ष, साधना सरगम एवं सोनू निगम की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गाना।

अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुलाम फिल्म का ये गाना अलका याग्निक एवं कुमार सानू की आवाज में गुलाम, जो कि बनी थी 1998 में। इसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया और मुख्य भूमिकाओं में आमिर खान, रानी मुखर्जी और दीपक तिजोरी है। गुलाम का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मध्यम रहा। इसका संगीत मशहूर रहा, खासकर आती है क्या खंडाला।

0: chom aking nam nali na kok studio mai chư cần và bà chà pa poi này kham tay kham ti tư khai mai sút yau ho sa thu
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए आप सुनते हैं हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, और साथ ही सुनते हैं हिंदी फिल्म में गाने। बॉलीवुड अपडेट में आइए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में, बॉलीवुड की खबरों को देखने आइए। पहली खबर है बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। डायरेक्टर प्रियदर्शन की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म हैवान की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। सोनाक्षी और जाहिर ने लंबी डेटिंग के बाद साल जून 2024 में सादगी से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। शादी के दो साल बाद भी दोनों का रिश्ता किसी न्यूली मैरिड कपल जैसा फ्रेश और प्यार से भरा ही लगता है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म में वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा असाधारण सफर तय कर रही है जिसे देखकर ट्रेंड बंदी डंग है। तीसरे हफ्ते में अक्षय कुमार की बड़ी मल्टी स्टारर कॉमेडी वेलकम टू द जंगल की रिलीज और करीब 700 शोज कम होने के बावजूद इस सीरियस इमोशनल ड्रामा की रफ्तार दोगुनी हो गई है। ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मनोज वाजपेयी ने मुस्लिम धर्म की शबाना रजा से शादी की है। कई सालों की डेटिंग के बाद मनोज और शबाना ने साल 2006 में शादी करके हमेशा के लिए एक दूजे का हाथ थामा था। इस खबर को आप देख सकते हैं बॉलीवुड के बॉलीवुड सेगमेंट में आज तक में।

पीएम नरेंद्र मोदी के बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी काफी बड़े फैन हैं, लेकिन अब सुनील शेट्टी ने खुलासा किया है कि उनकी 15 महीने की नातिन इवारा भी पीएम मोदी को बहुत लाड प्यार करती है। वो हर सुबह उठकर मोदी जी कहते हैं। फराह खान की कॉमेडी फिल्म 30 मार खां जब आई थी तो बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। डायरेक्टर का कहना है कि ये उनके करियर की इकलौती फ्लॉप फिल्म है जिसके लिए उन्हें काफी बुरा लगा था। एक्टर राहुल देव 2020 से एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे संग लिव इन रिलेशनशिप में हैं। राहुल के बेटे संग भी मुग्धा शानदार बॉन्ड शेयर करती है। उर्मिला मातोंकर 90s में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में चम्मा चम्मा सॉन्ग से बहुत फेमस हुई थी। ये गाना बड़ा सुना जाता था, मगर एक्ट्रेस इस गाने को करने के लिए पहले राजी नहीं थी। अब उन्होंने इसकी वजह भी बताई है।

0: श्रोता दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए इतना ही। और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का कार्य समाचार। कृपया बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।
1: अरुणाचल वासियों, कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए।

0: कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
1: तेरे दिल का मेरे दिल से।
4: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि झुंडत मनी चा अनातारिक होनीबार इरुमा के वांचो साय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी कमे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निरम हान पकमा सेचिल्स नॉक तो अनप अचे लकाना मिस्टर मोदी हका तो सेचिल्स नॉक नेशनल डे गोल्डन जुबली टू सो तो गेस्ट ऑफ ऑनर अंग हकाय हलका अंग अचे थोमा प्राइम मिनिस्टर ए देसनी बामा शमखा अंग अचंके बोमा इंडियन ओशन रीजन अंगे खनक नुपन अमई अंग तमक तमसा के रोंगमा सेचिल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर पेड्रिक हर्मनी फाय ngororangchu vanai levanle सेचिल्स नॉक ए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC खामा ngot nui ajingle na kap ko le india ba ma session level le prime minister narendra modi ka ke e hom cha wan ka pai thoma le सेचिल्स foreign minister बेरी पोरे ए अनि गानि के तुनु पाई पाई तो इपोंग के ग्लोबल ऑर्डर बोमा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बामा वानलम चू लाई ले रिंग अंग मोट था बोमा चा वानु मजाउ पांगनु खुई खप चौक के राय ले इंडिया अंग सिक्योरिटी काउंसिल मा पार्मनेंट सीट को अंग के को कली जाउ ले वन ले पोरे ए सेचिल्स चीमा खांगे इंडियास कैंडिडेट चा पाई तो से के बोमा हया हो थम खामा इंडिया एतो यांगला थेबा चाबानु जाउ अजित के बोमा अजित लेंगो के बोमा तुमै लमचु खवाई लेवनले कैई पान्यो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोसा टीचन मोलेन मा मा साम कमी हक अली लम के अनि ओलेनी इली गुइना हले डेम होनुई आखपले थमता ए एंतोले मामा होतम एचु निपको कॉलोनी माले लम लेंगो तंतैले हाफाइटल तमले दम डेम हाम खंग एले के किमिन लमचू रंग राय लमोंगो तान तैले चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए अनि तावांग डिस्ट्रिक्ट ओ जसवन घर वा मेमोरियल मा 1962 इंडिया चाइना होचा अरान मा नूरानंग होनुई मा अचा अरान के मरन के महावीर चक्र पोस्टुमस राइफलमैन यशवंत सिंह रावत बोमा मामा सिपाही बुतोले माइपोचो लशोमले सोशल मीडिया मा सीएम खांडू ए हले मादेस कोसन अंगले अचा अवा ले सन्नमत के सिपाही बु पंगनु बाम वे आखा खन पुले होले चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए अनि तावांग तो थिंग बु टिंग मखांग ए बजरंग हा हो कपले यादगा होगा पुली अरम मीटर ट्रेकिंग लम आंगला आंगले सिविल मिलिट्री असमले अतुआया के एक्सपेडिशन ऑपरेशन अरुणा डॉय तो फुमरमले अकाटवनले हाई एक्सपेडिशन इंडियन आर्मी बोमा नी मासले अशमला ले तुजाले सोशल मीडिया मा सीएम खांडू ए हाई एक्सपेडिशन मखांग ए अरुणाचल प्रदेश अंग के एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल होलम दाप के मखांग ए हाखा तो के खनक नुहान पंगमा मोट सचू लाय अंतोले हाई खांग ए फ्रंटियर स्टेट पंचू मई जौल होले मनी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC ए मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 मकांग ए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट मा जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी आंग डॉक्टर्स पुरम बंजौ कामले हाया कैंडिडेट्स बु याले चानी मकांग ए चारक तारिक कपले अंगोट के वाइवा वॉस मा चायका तो मैले लांके तो हुला ले कामले हले काम के डॉक्टर्स बु तो चीफ मिनिस्टर पेमा

0: န်ဒူဒီပတီချီးမင်းနစ္စတာချောင်းနာမန်အက်ဂျူကေးရှင်းမင်းနစ္စတာပီဒီဆိုနာဘောမာဟဲလန်ဖဲမလီဝဲလ်ဖဲမင်းနစ္စတာဘီယူရမ်ဗာဂဲအလမိုက်ပူလေအချောက်လေပုံရမ်လေ NCC group headquarter Tezpur khang ke first Arunachal Pradesh battalion national cadet corps first APP BN NCC hotam e Itanagar angke Rajiv Gandhi government polytechnic college RGGPC ma June 40 makhang July aram tarikh kaple home final combined annual training camp kam yuva apda mitra scheme jams program le tu jana hajakam NCC cadets bu honi punyana jau hakna NCC group headquarters Tezpur khama horan commander angkam ke brigadier mayang ved thonhap nui omla le kem honi buto phau le aham ke boma cadets bu phai satika tik le chu wanre le che minister pema khandu e mani tawang district to vibrant village program khama miwak saban aga bama high genetic merit sgm jersey crossbreed mahu hota aga yo han ko le haya khange hale mahu tamle moksa ang mayang ke boma hale ke bu e ngunjan chu asak chak le kap so kai cm khan du haya motto phong ke koma government of india department of animal husbandry and dairying boma nddb dairy services to le chok le Mizoram State Banarok Boma Union Territories Aram Khama Iponke Electoral Rolls Special Intensive Revision SIR Mode Election Commission of India Chima Khange June Chachal Leten Leko Ke Nyi Aram Thoto Vai Mokla Chok Dwa Diomali Police Diomali Administration Phai Asam Lat Le Len Ke Buspitiba Nyi Tirap District To Shiko Drakhangmi kap le khak le diomali ma wrg college khonukchi to bate colony ma akap le lam kama chi ma heroin le auke punyi ban ata grams mun jatku honat mobile phone boma mama tatali bule bangle hayami wak rangsaban aku ngui dauke yam yang thongnok thingnok le aman ke changpu le chingdwa hale ndps ek kama khak rai le hale bangabu chu pang vices dwa haboma itanagar ke metropolitan center mci e pabum pare omla le district ali orange alert zone khama kyak ke boma haja honui buma rang jong tani honui to renu ma wat ko la le hole haboma district bananat yellow alert zone khama kyak le ani ka ka ho iwai eya aka
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आगे के सफर में आइए, अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। तो लीजिए आज सुनते हैं वजह तुम हो फिल्म के चंद गाने। तो पहला गाना पेश है मिथुन अल्तमाश फरीदी एवं तुलसी कुमार की आवाज में।

0: आपने सुना अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार एवं न्यूमैन पिंटो की आवाज में ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने, फिल्म वजह तुम हो के चंद गाने आपने सुने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों

0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
0: दिल से दिल की बात,
1: बस आपके नाम।
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुची झानुल हिउ मानो लिनी एतानिची इदुमिसमी आहोला केची दरगालंबो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में असुनिगा बने ओना सिचलिस आतिको मेलो बाबा ने सिचलिस में आतिहता तोला मंगाहनु बा इनी एनागा मा करू काची शांबे बौदा ला होगा प्राइम मिनिस्टर में सिचलिस प्रेसिडेंट डॉक्टर पेट्रिक हार्मिनी गो चौगा गने आतिकानी में जोरगा वे थोपुंदु ची पो चिचगाई बो महो इंडिया में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनसी मा परमानेंट मेंबर शावदा लगा चाहे सिचलिस में अशुगा जिदा ने सिचलिस फॉरेन मिनिस्टर बेरी फॉरेन में लगादा आहोगा कई पनेर डिस्ट्रिक्ट माचे माचिम्बुगे मने गा मतगा बा इमु कापे है एतानी ओ कापे नीली बा मो अलगादा आहोगा अला इमु अनब्रो कान्यमा अपा गने अनब्रो गे में देम्मा अलगा महो अनब्रो गे तो में निपको कॉलोनी माचे इली जतला मा अलगा दा आहोगा आ महो देम्मा ने किमिन बावे आय छबु अपगा दा आहोगा चीफ मिनिस्टर पे मखंदु में ओना तवांग डिस्ट्रिक्ट माचे महा इनो मांबाव खे तारो कानी माचे नो चाइना गो अंदोगा महो आशंगा उम्बा सीपीए पहुआने महावीर चक्र अवार्ड हंगाबा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ब्रोचा जसवंतगढ़ वार मेमोरियल मा आसपी अखा है बता आओगा उमे बहा अतिबु गबने उसे तो बा चपही रावत वाला जिदा ने चीफ मिनिस्टर में लगादा आओगा सिविल दो ने आर्मी मो अनब्रो अचगाला एयाशुया इमु अनब्रो गे इंडियन आर्मी ने निमास में तवांग डिस्ट्रिक्ट में ची थिंगबू अतिको ने एजर मंगा तो ने माओ मंगा ने यू कासो मीटर यू एयांदीपु शुआ गे नाओ चा आहेगा बचे चीफ मिनिस्टर पे मखंदु में ओना असला के गने आहे बदा आओगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आहा एचला पुची जानहु इनी माची ने जानहु एरो माची ने लीबा बाइबल वॉस इंटरव्यू अखगा मने हेल्थ ने फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बने यू जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलम्बो कैतगा बचा है प्राण बाबूदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन में लगातार आहोगा अलग मुंह में गवर्नमेंट डॉक्टर शाकाही बचा है प्राण बाबूदा ने एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना दोने हेल्थ ने फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बीयू राम वागे में लगा आहोगा याम्स प्रोग्राम को माने तेजपुर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर को खाजिगा अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन में अहा अचला पुची जानू ईपी माची ने अब ई गाँव अचला पुची एसो माची लिबा गाने ईटानगर राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक माने ट्रेनिंग आही पगाम बमा माओ कहने काटू इन एनसीसी आलम में ट्रेनिंग आही तो मुदा आहोगा ट्रेनिंग आई तो मुमा एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर माचे मैंने अजय गहता ब्रिगेडियर मयंक बेद में अतु बता आहोगा वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम बीबीपी को माने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में बुनी तवांग डिस्ट्रिक्ट माचे इमु असर मंगा है माओ मंगा नुची दो आएगा जर्सी माचू अपीगा ने आ माचू मैग माने माचू मया में इनो में माचुनुची अमय जाओ सदा लाय बदा आहोगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माचे मैं अरुणाचल प्रदेश माचे एनिमल हस्बेंड्री दोने डायरिंग डिपार्टमेंट आई दोने एन डी बी बी डायरी सर्विस है अब ने अली आरे उचमा उजिदा ने चीफ मिनिस्टर में लाओ बदा आहोगा होला हो स्टेट दोने कासो यूनियन टेरिटरी आती कोलंबो मा मिजोरम में एहन दो एम ऑनलाइन माने एसआर माने बोर्ड आजपो अजपम्बो हिगा स्टेट शगाही बदा

A श्रोता सुन रही थी इतुम इसमें श्रोताओं का समाचार। इतुम इसमें श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम, माफ कीजिए इदु मिसमी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। और आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने, वांटेड फिल्म के कुछ गाने आइए सुनते हैं। पहला गाना पेश है वाजिद एवं अमृता की आवाज में।

0: आपने सुना कमाल खान, सुनिधि चौहान एवं सुजैन के आवाज में फिल्म वांटेड का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने।
1: कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से

0: नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोत दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। श्रोताओं, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तंगसार श्रोताओं का समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे नीलम के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, आगे का सफर आपका खुशनुमा हो। छोड़े जा रही हूँ आपकी चहेती आरजे नीलम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस तीसरी प्रसारण सभा में आज मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, दूसरी प्रसारण सभा के खूबसूरत सफर का आप आनंद ले रहे थे आपकी अपनी आरजे कविता के साथ। स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए आरजे कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए अब शाम की सभा का आरंभ करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: Ittanagar.

अक्सर माता पिता तब परेशान हो जाते हैं जब उनका बच्चा छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने लगे। बता दें कि इस स्थिति में गुस्सा करना या सजा देना समस्या को और बिगाड़ सकता है। कई बार बच्चे डर या दबाव के चलते ऐसा करते हैं, इसलिए अगर हम समझदारी और प्यार से काम ले तो इस आदत को आसानी से सुधारा जा सकता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे बच्चों की झूठ बोलने की आदत को दूर करने के कुछ उपाय के बारे में। सोचिए आपका बच्चा सामने खड़ा है और आपसे कह रहा है, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि उसने कॉपी तक नहीं खोली, या फिर वो कहता है मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन स्क्रीन टाइम देखने पर कुछ और ही पता चलता है। ऐसे झूठ जब रोज रोज सुनाई देने लगे तो चिंता होना, जी हाँ, लाजमी है। कई माता पिता ऐसे समय में गुस्से से भर जाते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं या बात करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चा झूठ क्यों बोलता है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करता है या उसके पीछे कोई वजह छिपी होती है? असलियत ये है कि बच्चों का झूठ अक्सर डर, दबाव या स्वीकार किए जाने की चाहत से आता है, न कि किसी बुरी नीयत से। और अगर समझदारी से ना निपटाई जाए तो ये झूठ आदत बनकर उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बिना डांट फटकार के प्यार और समझदारी से कैसे छुड़ाए बच्चों की ये झूठ बोलने की आदत। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं ये गीत।

डांट या सजा मिलने का डर होता है। अगर घर का माहौल डर और अनुशासन से भरा होगा तो बच्चा हर बात छिपाने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक खुले और सुरक्षित माहौल बनाएं जहां बच्चा बिना डरे आपसे हर बात कह सके। जब बच्चा कोई गलती करने के बाद भी सच बोलता है तो उसकी तारीफ जरूर करें। जैसे मैं जानता हूं तुमसे गलती हुई लेकिन तुमने सच बोला, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से बच्चे को लगेगा कि सच बोलना भी सराहा जाता है और वो अगली बार झूठ बोलने से पहले कई बार सोचने लगेगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। अगर घर में बड़े सदस्य कभी कभी झूठ बोलते हैं, जैसे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूं, तो बच्चा भी उसे सही समझने लगता है। इसलिए खुद को भी ईमानदारी का उदाहरण बनाना होगा। अगर कभी कोई मजाक या सफेद झूठ भी बोले तो बच्चों को समझाए कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। इस आदत का फायदा उठाकर आप उन्हें झूठ और सच के बीच अंतर बताने वाली कहानियां सुना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हर छोटी गलती या झूठ पर बच्चे को टोकते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाता है और झूठ बोलने लगता है। इसके बजाय कभी कभी उसकी बात पर भरोसा जताइए, भले आपको लगे कि वो झूठ बोल रहा है। जब बच्चा देखेगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे वो भी ईमानदार बनने लगेगा। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म से ये गीत। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में। श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की झूठ बोलने की आदत को दूर करने के कुछ उपाय के बारे में। श्रोता मित्रों, ध्यान रहे, बच्चों की झूठ बोलने की आदत कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि एक सीखने का दौड़ है। अगर आप धैर्य, समझदारी और थोड़े प्यार से काम लें तो ये आदत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। बच्चों को डांटना या सजा देना इस सिचुएशन को और खराब कर सकता है, इसीलिए अपने बच्चे को सुने, समझे और साथ मिलकर उसे सही रास्ता दिखाए। तो चलिए, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत तारे जमीन पर फिल्म से, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन और अन्य साथियों ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और उसके तुरंत बाद यानी कि ठीक 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई।
2: ऐसा ना? नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कई पन्नी और जिला उपायुक्त ने पुष्टि की है कि अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पोसा इलाके में एसडीआरएफ टीम के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज दोपहर एक और शव बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेलेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेलेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर के प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीति

नैतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिला स्थित जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानाम की लड़ाई में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेडिकल स्पेशलिस्ट भर्ती 2026 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी के पद पर कुल 70 डॉक्टर का चयन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ईटानगर द्वारा नामसाई में इंटरनेशनल MSME डे के अवसर पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन। मौसम विभाग के अगले दो दिन में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के कई पेन्योर जिला उपायुक्त स्वेता नगरकोटी ने पुष्टि की है कि अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पोसा इलाके में SDRF टीम के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज दोपहर 12:30 पर एक और शव बरामद किया गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि शव की पहचान 30 वर्षीय बालाड़ी मारक के तौर पर की गई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अब तक 2 शव मिल चुके हैं और 3 लोग अभी भी लापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेलेस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेलेस के राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हार्मनी को सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेलेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेलेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक ने आज ईटानगर के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और बचाव के लिए राज्य पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेना था। राज्यपाल ने अभियोजक निदेशालय को मजबूत करने की सलाह दी। पूरे राज्य के नजरिए को अपनाते हुए राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस मुद्दे को मिशन मोड में लेना चाहिए और जिला स्तरीय पर आपसी तालमेल के साथ प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिला स्थित जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानाम की लड़ाई में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत प्रदान किए गए महावीर चक्र के सम्मान में तथा अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन वीरों के बलिदान को स्मरण करना उन सभी सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता को पुनः दृढ़ करता है जिन्होंने साहस और निस्वार्थ समर्पण के साथ देश की संप्रभुता की रक्षा की है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेडिकल स्पेशलिस्ट भर्ती 2026 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी के पद पर कुल 70 डॉक्टर

0: का चयन किया गया है। चयन इस माह की 22 से 26 तारीख के बीच आयोजित साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व्यूराम बागे ने सभी चयनित डॉक्टर को बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ईटानगर द्वारा नामसाई में इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य की आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लाए गए एमएसएमई फेलिसिटेशन ऑर्डिनेंस 2026 एमएसएमई लोन प्रक्रिया के लिए बैंक ब्रांच में सिंगल विंडो सिस्टम, स्टार्टअप के लिए अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 5.0 और दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना व अरुण एमएसएमई मिशन जैसी दूसरी खास पहलों के बारे में बात की। ये योजनाएं राज्य के युवाओं और महिला उद्यमियों को अच्छी खासी कैपिटल सब्सिडी और ब्याज पर छूट देती है। उन्होंने नए उद्यमियों और महिला एसएचजी सदस्यों से अपील की है कि वे नौकरी खोजने के बजाय आत्मनिर्भर और नौकरी देने वाले बनने के लिए इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पकम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, इसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा देशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम के मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तावांग, कुरुंगकुमे, शियोमी और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिक्स ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान में नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Prem Sharma. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Seychelles in a short while on a 3-day visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Harmin, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence and its contribution to peacekeeping, maritime security and multilateral diplomacy. Faure said Seychelles supports India's candidature and believes India's inclusion would strengthen global balance and promote peace. Deputy Commissioner K. Panyur Sweta Nagarkoti has affirmed that one more body has been recovered today at 12:30 p.m. during the search and rescue mission in flash flood-affected Puza area by SDRF team in K. Panyur district in Arunachal Pradesh. The DC said the body has been identified as 30-year-old Balari Marak. She is survived by her mother. Late Balari will be cremated in nearby church this evening. The DC also informed that so far two bodies were recovered and three are still missing. Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General retired K.T. Parnayak, chaired a high-level review meeting at Lok Bhavan, Itanagar today to assess the measures being undertaken by state police for safety and protection of women and children in the state. The governor advised for strengthening the Directorate of Prosecution, calling for a whole-of-state approach. The governor urged active participation from all sections of society, including Gaon Buras, community leaders, educational institutions, parents, and civil society organizations. He said that deputy commissioners and superintendents of police must take up the issue and mission mode and ensure coordinated efforts at the district level. Deputy Inspector General of Police Crime, Dr. Joy Tirke, presented a detailed overview of crimes against women and children in the state. He also briefed the governor on Project Abhaya, a strategy police public trust awareness and community safety initiative. In Arunachal Pradesh, the Reserve Bank of India, Itanagar, organized a town hall meeting on micro, small and medium enterprises at Namsai yesterday to commemorate the International MSME Day. Addressing the participants, Deputy Chief Minister Chauhan Men highlighted MSME sector's vital role in driving economic growth of the state. He spoke about the recent introduction of MSME Facilitation Ordinance 2026 for improving ease of doing business, single window system at bank branches for processing MSME loans, Arunachal Pradesh Entrepreneurship Development Program 5.0 for startup and other flagship initiatives like Deen Dayal Upadhyay Swalamban Yojana, Arun MSME Mission, etc., which offer substantial capital subsidies, interest subvention for youths and women entrepreneurs,

लीजिए प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम। अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा नोक्ते प्रोग्राम अथु रंगजथा वानबंगा सानपोत दंग रिन रिन नंग नोक्ते को बोचो तत्कत थेजा रोकनी इंगित तारीख हुनी बाद जून जंग कोबोचो को तेपे वांगो सोसिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नी रोम रंग थेजा रंखा सेचलेस नंग होखोम वा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेस ऑफ ऑनर रंग सेचलेस नेशनल रंग वो गोल्डन जुबली पे कुरंग होकमिन अते में डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी सेचलेस हे प्रेसिडेंट दम को नंग हा दंग तुम को संथम थम सोंग तोंग रंग हुनमिन हा दंग संसि रंग लाड्रिड रंग ना में होंग जाप का सेचलेस फॉरेन मिनिस्टर बेरी फोरे में इंडिया पे परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को चो मिंजोबा ना में होंग जाप का जनजुन में इंडिया जावि हुनमिन मोनहियक लदंग रंग संथम सोंग तोंग रंग लाड्रिड ते हा दंग ना में होंग जाप का इंडिया नंग अरे लमखो कोचो सोकमिन हा दंग संसी रंग लाडरेटमिन थेजामिन के पन्यो डिस्ट्रिक्ट को सर्च एंड रिसर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है वानबली मिन्यान माचो पे हेतु मिन लमथु पूसा फ्लैश फ्लड इंसिडेंट पे थेजा में नी बली लादंग था अरे लम काटते हे तंगते हे डेम साइड गानंग तंगते पे निपको कॉलोनी गानंग लमका दिको किमिन लम दम नंग गामिन वाथिन वन थिन पमिन संसियत थू थेजा जसवंत सिंह वार मेमोरियल तावांग नंग राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्रे पोस्टुमस दिको नूरानंग रान 1962 इंडिया चाइना व मारित तेहे रंग अरथे को चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू होखोम व सोशल मीडिया नंग खंडू में हनिया नंग हा दंग रंग लाडित ते दंग व नंग हा दोंग नंग अहोम ते पंग ते दंग व अंगामे रंग का थेजा तावांग डिस्ट्रिक्ट नंग तिंगबु हा में बजरंग हा हो हा जात बंगा चा बंगा रोक सेट वानरोम किलोमीटर पे एक्सपीडिशन ऑपरेशन अरुणदय यूनिक सिविल मिलिट्री हे में मोट काटवा ट्रेकिंग लम पे चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में फ्लैग ऑफ होन का अरे मोट काट पे इंडिया आर्मी दिको निमास हे रूल में मोट काटवा सोशल मीडिया नंग पेमा खंडू में अरे ट्रेकिंग थुअन में अरुणाचल नंग टूरिज्म पे सनसीट रंग दिको नंग हा दंग मीन रंग मीन काम पे होंगांगा में होंगजाप का मजा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट पा हाजातनी रोगनी इरोक होंगसेता को रोगनी डॉक्टर जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रंग काम कुएगा कैंडिडेट है अपे अरजंग रोगनी वानी में रोगनी इरोक तारिक्तो को वाइवा वॉइस इंटरव्यू दंगता को सिलेक्ट होगा चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउनामिन एजुकेशन मिनिस्टर पासांग दोर्जी दिको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बियोराम वागे में जंतो डॉक्टर्स कामचो तेहे नंग दंको आंगेगा बिराब डिस्ट्रिक्ट नंग दियोमाली पुलिस दिको दियोमाली एडमिनिस्ट्रेशन है में लिहक ड्रग्स हुसंग ते नंग चो लोहेगा अतिदम नंग रोग बंगा वांथे ग्राम हेरोइन दिको हाजात खु चाइनीज गुन मोबाइल फोन न्याप खो हे बाते कॉलोनी दियोमाली व चोलोई का अरे ड्रग्स हुसंग तेमिन न्यामयांग थिंगनोक अते मा को मिन एनडीपीएस ए खन को पुलिसे में चोलोटवा मजा चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में चाथे रोप बंगा हाई जेनेटिक मेरिट जर्सी खत पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तावांग नंग रोग रोम बेनिफिशरी थे नंग फनकोई का डेयरी फार्मिंग मानपोम ते हे काम सनली दिको अरे काम पे गांगा रंग संदंग को आंगे का चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग दिको एनडीडीपी डेयरी सर्विस है नंग डंग को आंगे का मिजोरम अबंग चाथे परसेंट डिजिटलाइजेशन ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इलेक्टोरल रोल्स खोन को चंतो इची वानरोक डिस्ट्रिक्ट वानरोम यूनियन टेरिटरीज व अबंग होंग का इलेक्शन कमीशन इंडिया में नी रोम रंग रोकनी इंगितो को मोटकात पे तादंग रंग गए का मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर व खोबोन जून में वानबली डिस्ट्रिक्ट दम को पापुमपारे नंगमिन ऑरेंज अलर्ट जोन नंग थियन का अरे थे को रंगलिन खेतबालियप रंगपात चांद तादंग रंग गए का इचिवानी डिस्ट्रिक्ट नंग येल्लो अलर्ट जोन नंग थियन का डिप्यूटी कमिश्नर के पन्योर श्वेता नगरकोटी में जो वन थे मंगला चोटी गा में कोबोचे का थेजा

0: rangi barota thako rok rom rangpa te lihak balari marak mangpe chu ikha ahethu toko wani mangpe bangcho diko jowan rom mangpe lamthu flashwood affected posa theko marite tawa teja nang nokti khobot pe akajola thon mangta aru nang nokte ronyan se chotat mangan
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और अभी आपने सुना नोक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:08 हो रहे हैं। तो लीजिए, इसी के साथ ही प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ट्रैक का ये पहला गीत। ये बेहद ही खूबसूरत गीत दो दीवाने शहर में फिल्म से, जिसे आवाज दी है तुषार जोशी ने और सुमेधा ने। तो चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। तो कहानी आपको सुनवाते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, ये धैर्य और सफलता की कहानी है। ये कहानी रामू और श्याम की है, जहां रामू ने धैर्य खोकर कई जगह असफलता पाई, जबकि श्याम ने एक जगह मेहनत से मंजिल हासिल की। ये हमें सिखाती है कि जीवन में भी अगर हम धैर्य और सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। तो कहानी इस प्रकार है। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू को अपने खेत के लिए पानी की जरूरत थी। गांव के मुखिया ने उसे एक जगह गड्ढा खोदने की सलाह दी और कहा, रामू मेहनत करो, पानी जरूर मिलेगा। रामू ने उत्साह से काम शुरू किया। 15 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद जब पानी नहीं मिला तो वो निराश होकर बोला, अरे भाई, यहां तो पानी नहीं है, शायद ये जगह गलत है। उसने दूसरी जगह पर हथौड़ा चलाया। 20 फीट तक खोदने के बाद भी पानी ना दिखा तो रामू ने गुस्से में कहा, यहां भी कुछ नहीं, अब तो लगता है पानी ढूंढना बेकार है। वो तीसरी जगह गया और 25 फीट तक गड्ढा खोद डाला, लेकिन नतीजा वही रहा। हार कर उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब तो यही मान लेता हूं कि यहां पानी नहीं है। थक हार कर वो बैठ गया और अपने आप को असफल घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद एक और किसान श्याम आया। उसने वही पहली जगह चुनी जहां रामू ने शुरुआत की थी। श्याम ने धैर्य से 30 फीट तक गड्ढा खोदा और आखिरकार पानी का सोता फूट गया। रामू ये देखकर हैरान रह गया। वो श्याम से बोला, भाई, मैंने तो 3 जगह पर 60 फीट यानी कि 60 फीट खोदा, फिर भी पानी नहीं मिला, और तुमने एक ही जगह पर 30 फीट में हासिल कर लिया। श्याम मुस्कुराया और बोला, रामू, धैर्य ही असली ताकत है। बार बार जगह बदलने से वक्त बर्बाद होता है, लेकिन एक जगह पर मेहनत करने से मंजिल मिलती है। जी हाँ श्रोता मित्रों, रामू ने शर्मिंदा होकर कहा, सच कहा भाई, मैंने जल्दबाजी में हार मान ली, अब से धैर्य से काम करूंगा। श्याम ने उसे हौसला दिया, चलो साथ में खेत सींचते हैं और सब सिखा दूंगा। श्रोता मित्रों, ये थी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी ने जरूर इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख हासिल की होगी। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे इस गीत को क्रिस ट्री फिल्म से अलीसा चिन्नय और जुबिन गर्ग की आवाजों में। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इसी के साथ

बाद ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप बने रहें हमारे साथ यानी कि अरुण एफएम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: श्रोता मित्र, चलिए अब सजाते हैं कुछ बेहतरीन गीतों से शाम की महफिल। आपको लिए चलते हैं प्यार भरे एक खूबसूरत संगीतमय सफर पर। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम शाम की महफिल में। तो चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, और इसी गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: हम जीत गए।

0: चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। इस खूबसूरत गीत के बाद श्रोता मित्रों अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं परिणीता फिल्म से, जिसे आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। लीजिए, पेश है ये बेहद ही उम्दा गीत।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं

अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें।

0: करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: ब्रेक के बाद कार्यक्रम शाम की महफिल में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं प्यार भरे खूबसूरत संगीतमय सफर पर। तो चले इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कॉकटेल 2 फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

मोहित चौहान की आवाज में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत गीत को वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से। श्रोता मित्र आपको बता दें कि इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं शाम की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जी हां दिल है तुम्हारा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखिए, 28 जून 2026 रविवार, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम, ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ ही आपके अपने रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:05 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्में गीतों पर आधारित कार्यक्रम। जी हाँ, आप सुन रहे थे साहिबा फिल्म का एक खूबसूरत गीत हरिहरन की आवाज में। इसी के साथ ही आपको सुनवाना चाहेंगे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत अलका याग्निक की आवाज में, खलनायक फिल्म से।

श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आनंद लेते रहे इस गीत का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: बात।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त शाम के, जी हां, 6:40 हो चुके हैं। और तो चलिए हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। श्रोता मित्र, हम आपको सुनवाएंगे, जी हां, कुछ ऐसे फिल्मों के गाने। उससे पहले बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के नाटक पर आधारित बॉलीवुड के कुछ फिल्मों के बारे में और आपको सुनवाएंगे इसे इन्हीं फिल्मों के कुछ गाने। जी हां, विलियम शेक्सपियर की कहानियों से प्रेरित फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड इसमें पीछे नहीं है। गुलजार, विशाल भारद्वाज से लेकर संजय लीला भंसाली तक ने उनके नाटक पर आधारित कई रिमेक बनाए हैं। ये रिमेक बॉलीवुड के हिट फिल्मों में शामिल है जिन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। जी हां, यहां हम कुछ फिल्मों की बात करेंगे जो विलियम शेक्सपियर के नाटक पर आधारित है। फिल्म हैदर शेक्सपियर के प्ले पर आधारित बॉलीवुड फिल्म है। ये फिल्म हैमलेट का रिमेक है। हैदर फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और विशाल भारद्वाज द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर, तब्बू और के मेनन जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया है। ये फिल्म कश्मीर जितने जटिल और संवेदनशील मुद्दे पर बड़े बेकौफ तरीके से सच बयां करती है। तो चलिए, फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्र, गुलजार साहब की 1982 की फिल्म अंगूर शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर से प्रेरित है। कम ही लोग जानते हैं कि अंगूर दो दुनी चार का रीमेक है, जो बंगाली फिल्म भ्रांति बिलास का हिंदी रीमेक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इसी नाम से बंगाली उपन्यास पर आधारित है। ये विद्यासागर का बंगाली उपन्यास विलियम शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर पर आधारित है। अंगूर फिल्म में संजीव कुमार और देवेन वर्मा है और इसे गुलजार द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है। ये उस दौर की सबसे बेहतरीन, जी हाँ, कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। इसे बच्चे बड़े दोनों उम्र के लोग देख सकते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोता मित्र, अब हम बात कर रहे हैं मकबूल फिल्म की। जी हाँ, फिल्म में भारतीय समानांतर सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों ने अभिनय किया है। ये फिल्म क्लासिक फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में तब्बू, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इरफान खान शामिल थे। ये फिल्म उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन का, जी हाँ, गुर्गा मकबूल को अपने बॉस की मालकिन निमी से प्यार हो जाता है, जो उसे डॉन को मारने और अगला नेता बनने के लिए उकसाती है। जी हाँ, ये फिल्म भी विलियम शेक्सपियर के नाटक से ही प्रेरित है। गोलियों की राज लीला, राम लीला, संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन फिल्म है। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म रोमियो एंड जूलियट का रीमेक है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं। हालांकि ये पहली बॉलीवुड फिल्म नहीं है जो रोमियो एंड जूलियट से प्रेरित है। इसके अलावा इसक जादे, कयामत से कयामत तक एक दूजे के लिए भी रोमियो जूलियट का रीमेक है। जी हाँ, ये सभी फिल्में अपने दौर में सुपरहिट रही हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक गीत।
1: खूब खूब आभार। अपना गुजरात में हालो मने नी आगे बहुत नाम नो गाम छे, त्या मजूर वर्ग बहु छे, तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी। अने त्या कई थाकी ने लोका सांजे मौजू करता हो त्यारे कई

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का आखिरी गीत ओमकारा फिल्म से, जिसे गाया है रेखा भरद्वाज और अन्य साथियों ने। जी हां श्रोता मित्र, कार्यक्रम के तहत आज हमने बात की महान नाटककार रचनाकार विलियम शेक्सपियर जैसे महान कलाकार के नाटक पर आधारित हिंदी फिल्मों के बारे में। तो कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी इटानर पोकुमा हिलपोल अलोचेम युगला लोक कन नरपुआ उरुंग कन बाजे रेम तलम अलमेन सुरुंग निशि आउम आर मुनंजी ग्रेम तांग दत्ता चोब सुरुंग शिपुयम तापा चोरे जब जरेशी नरम आकोम हर पुबाबला फ्रोमिस्तान नरम नरेंद्र मोदी या साचेले से मुक ने अलोलुम गोब कागो जित कुब सिरिया दर फिकवा ओकसो बुग कागो बुगो जिला रिलग दिनो लो नर मोदी या साचेले स्मोक ग नेशनल डे गोल्डन जुबली ह मना ग क लो निन लुब क नब रिलगिर कुन हब मेम पातो ओक नुग इंद्रेप चारे प तादिग दिनो लो सो Nuya Mok Enyga Ajan Amin Ham Alba Jimmy Sisi Gala Indian Ocean Guda Law Don Dani Ni Gudu Ne Hinkin Kapak Alba Shilang Gulan Mos Luku Law Rugomengo Ham Alba Ribam Pabam Duku Sashales Mok Ga President Dr. Patrick Harmony Se Ne Aum Aham Jami Sirkuna Hamla Prime Minister Japa Tap Kumahal Mempa Dop

अभी आप सुन रहे थे निश्चित श्रोताओं का समाचार। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि निश्चित श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। जी हाँ, इस वक्त शाम के 7:08 हो रहे हैं और श्रोता मित्र, हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं सदाबहार गाने। जी हाँ, लीजिए प्रस्तुत है गाइड फिल्म के बेहतरीन नगमे।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। जी हाँ, हम आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म के गाने। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि गाइड फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और कालजयी फिल्मों में से एक है। 1965 में जो रिलीज हुई थी ये फिल्म मशहूर लेखक आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर आधारित है। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं देव आनंद और वहीदा रहमान। इस फिल्म का संगीत बहुत ही शानदार है। इसके गीत शैलेंद्र द्वारा लिखे गए हैं और एस डी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया है। जी हाँ, इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और बेहतरीन नगमा।

मोहम्मद रफी की आवाज में। हम आपको सुनवा रहे हैं 60 के दशक की बेहतरीन फिल्म गाइड के सदाबहार गाने। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हिमाचल वासियों कृपया ध्यान दे, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ओ मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। जी हाँ श्रोता मित्र, इस बेहतरीन खूबसूरत सदाबहार गीत का आप आनंद ले रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, हमने आपको सुनवाए 60 के दशक की बेहतरीन फिल्म गाइड के सदाबहार नगमे। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आगे हम आपको सुनवाएंगे कुछ नई फिल्मों के गाने, लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्रों, आगे आपको सुनवाएंगे मोहित चौहान की आवाज में पैडी फिल्म का ये गीत।

कहते हैं पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दे। इस खूबसूरत विचार के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत वॉर 2 फिल्म से।

क्या वादा करके वो निभाना भूल जाते हैं, लगा के दिल में आग वो बुझाना भूल जाते हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है सनम की, रुलाते हैं वो हमें और मनाना भी भूल जाते हैं।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। जी हाँ, तेरे इश्क में, फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में। और इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में यानी 8 बजते ही आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम। तो आप जुड़े रहें अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 8 बज रहे हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ ही समय हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नगमे जो हमारी यादों की स्मृति में धुंधली पड़ गई है, लेकिन ये संगीत हिंदी सिनेमा जगत का एक महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। चलिए, कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अनजान फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आवाज फिल्म से। ये गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। चलिए श्रोता मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नीला आकाश फिल्म से ये खूबसूरत गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में।

हम अजनबी थे तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए, और हम और तुम में उफ ये मोहब्बत कैसे हो गई हम तुम जाने नहीं जाने। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आनंद बख्शी द्वारा लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म से, जिसे संगीत से सजाया है कल्याण जी और आनंद जी ने। श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी

बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जी हाँ, ये गीत साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लव मैरिज फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे लव मैरिज फिल्म का एक गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी और अन्य साथियों की आवाजों में। इस गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुंचे हैं और आप सभी से विदा लेने का समय भी हो चला है। इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक का गैर एते तथा तकनीकी अभियंता बिमल चंद्र शर्मा। श्रोता मित्र, कुछ ही पलों में आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल के कार्यक्रमों को, तो आप बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपसे फिर होगी मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए इजाजत। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जीना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो

0: हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन सेस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है, अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊँ। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए।

0: हैं उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है। कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था
1: नहीं।
2: और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया। तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के

0: विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून उनसे जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना करना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त

वित्त विभाग अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण

0: उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यना, समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होगा। यह पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि इस्तीफे पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी और ईंटों की गहनों का पूरा हिसाब किताब में मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच

0: In US Open badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight sets, straight games, 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikant defeated Chinese Taipei's Liao Zhuofu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, उत्तरी भारत में भी झटके महसूस किए गए। और फुटबॉल में लियांड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घ कालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS रिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगी, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को होर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UK MT

0: ओ ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तरी इराक में सुरक्षा सूत्रों ने एरबिल के पास हमले की सूचना दी। दक्षिणी मोर्चे पर लेबनान के नवाती इलाके में इसराइल के ड्रोन हमले की खबर है। ये हमला इसराइल और लेबनान के बीच अमरीका की मध्यस्थता में हुए समझौते पर हस्ताक्षर के ठीक एक दिन बाद हुआ है। हिजबुल्लाह इस समझौते को पहले ही खारिज कर चुका है। इसराइल के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लेबनान के कब्जे वाले जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने कहा कि भूकंप की तीव्रता मध्यम थी और इसके केंद्र के आसपास बहुत कम नुकसान होने की उम्मीद है।
2: जो गहराई को 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये जिन रीजन में महसूस किए गए लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
1: विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों, सीमित राजकोषीय संसाधनों और खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के कारण देश पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस पैकेज में उर्वरक आयात और चावल उत्पादन को समर्थन देने के लिए 30 करोड़ डॉलर शामिल हैं। नगद सहायता, आजीविका सहायता और आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति सहित आपातकालीन व्यय के लिए 71 करोड़ 30 लाख डॉलर आवंटित किए गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंडो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में